प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार।

चारी रिखी के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अड्डे रुको कन्हैया नाप कंस को पथैया जम्बदूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे बूझत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी सारा सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जो कि जट्टाधारी सती साजे बड़े ब्रह्मचारी।

भेद भेद योग तेब नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत होर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूरस तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के वेद यो पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित सुनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीरे ओ पिकम्बर कित गाने न परत एते भूम ही ते हुए के फिर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दाब तो फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मानसे महीब औदलीब कैसे

अनेक धूप जी कबड्ड भेष भूष दी अनेक दानी वावत है शीश को का भय मल्ल जो बिगाठत अनेक दंड सूतो न दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जो पे डार रह उर्द मुख मान तेना मुंड ने हो रायो आद इस को कामना अधीन सदा दामना प्रभी ने एक भावना भीन कैसे पावे जगदीश को शीस पट कत जाके कान मैं खजूरा दस मुंड झट कत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आंख गोचरिया फल फूल को भजैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीज वृक्षन सो माटी को भजैया बोल पूज लीज जो कुसों कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाव भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे एक सोंगी कहूँ जोगी या बैरागी बने कब हूँ संन्यास फेस बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न फरमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकार पर शीत काल गुंजर ओ गधा अनेक ता पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक।

ताप के सहित जो बिपाई है ताप नाथ ताप नानेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो बिपायत अजाप देव भूत ना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर बत

करीम सोई रस करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही कि सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक जोद जानबो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज उई मन सब एक पय अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप गोर लाव है अल्लाह अभेक सोई पुराण ओ पुराण उई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे केते नब बीज अच पछ को करेंगे भज के तक प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे तेज ज्यो तेज में तेज जैसे तेज दिन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे कूकत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है किते गंग बास किते मदीना मकानी वास किते उदासी के भ्रमाई फिरत है करवत सहत किते भूम में गड़त किते सुआ पे चढ़त किते दूह को भरत है गैन में उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के बीन जग जारी मरत है सोध हारे देवता विरोध हारे दानव पटे बोध हारे बुद्ध कुप्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब बज हारे पंडित

सतरंग न वितरंग नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनीय छयादद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं वै निर्विखादं अछेदं भेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न दातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं।

कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जश गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की परम परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के ऋष्ठ पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ वद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ।

कहूं त्याग गृह हं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवे पस्तवे संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या।

नाग बानी कहूं गारडू गूड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं चल शाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजन

ना रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भोयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न बात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्र छितं जे राग न रेग न रोग भणं जे द्वैख न दाक न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार गरी नव खंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रो बिंद न गिंद न गंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल करार त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव श्राद्ध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग।

चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज पृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंधु दो मुखताव तपै कई गल्पन लो तब ताप करै नहीं नैक कृपा निध पान परै जय फोकड़ धर्म सभै तज है एक चित्त कृपा निध को जप

अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा।

है अदेक से कभिक है सदैव विश्ववरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विषेक विश्वभरण है जिमी जमान के विगे सदैव करम परम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदैव सर्वठौर मैं विषेक अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान।

सर्व ठौर रहयो बिराज राज राज ब्रवीन। जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे, वैस नंगे बिखे बिराज शूद्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप। जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन, तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन। सर्व सबल बतार के तर जानिए जह ज्योत, शेष नाम सहंस फन नेत पूरण होत। सोत सोत हटे सभा।

ध्याय ध्याय थके सबाय कर कोट कष्ट दुरंत, गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोत सोत थके महासुर पायो नह पार, त्वा प्रसाद दोहरा। एक समय श्री आत्मा उचरे मत्स्यो बयन, सब प्रताप जगदीश को कहो सकल पित तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहां सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मर

जाफरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखण दमके अध सिद्ध जमके फुंग फनंग जय जय हो सी मखासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमकण धुजा फरंग कण फणि फुंगारण जोत जिते सरधार विपुर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मखासुर मर्दन भूमा कासल उर्ध अधे दामनी प्रहासंस छव निवासंस सृष्ट प्रकार।

सुर नर मुर बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अथम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हो शेष ठार निवासन पाए पताल आकाशन ले संकटे निवारण अथम उधारण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद अकाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अकाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी दुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा

बारज बिलोचन प्रथम विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरण से सुप्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मैखा सुर मर्दन आद अनाद अगाधूर्धन घंट का बिराजे रण झुन बाजे भम बे भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुखूब।

दामने प्रकाशे अंतरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण पितल तले अष्टायत बाहन बोलने बाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो से मैं खासुर मर्दन आदन आदा गाद वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदर

कारण करीली गर्भ कहिली जोत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण सहस्र झमकण दामिन दमकण आदिते डुकडुके दमंके बाघ भुवंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो से मैखा सुरमर्दन आदि जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दूष प्रचंडन खंड अखंडन।

धूमराज विदुन संसूर्ण चुन संसुम्भन पादन सुम्भवथे जय जय हो सी मैं खा सुरमर्दन आद अनिल कथे।

दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब भेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूर सिवंत कई पलट सूर सिजदा कर।

कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साध। जय जात पात नहीं भेद भरम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म, जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा।

पशु नग नाग नर देव सर्व समय सबको व्रत पारे। पोखत है जल मैथल मैपल मैं गल के नहीं करम बिचारे। दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दुखन गौदल दुजन के पल मैं दल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमा पद भेद कते व भेद उचारे। रोज ही राज बिलोकत राजक रूप रुहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए। देव देव खपे अहम बेव न भेव लख्यो ब्रह्म स्यो फरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए। पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगात तवेक्षो भूत भवेख भवान अभय है। अंत विहीन अनादम आबदाग दुख छिद्र अक्षय है। लोकन के करता हरता जल मैथल मै भरता प्रव है। दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त के अच्छा है। जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्रीपद मापत ले है। रोकंते और सोकंते जल जोकंते वो भांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत खावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो करत है कर पाप संभोहन भेट न पावे। और की बात कहा कहे तो सब सो पेट ही के बट बीज बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा काल पताल रसातल जच भुजंग सब ऐसन न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूँ को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेब न वेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमित तुज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब पचहारे। भेद न पाए सक्यो अनभेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाथ अगाध बेगत वैख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरथ गोड किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तपोदन केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे। दीन दयाला काल भजे बिन अंत को अंत के धाम।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया।

पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल जावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना की देख बांधे आरभ के आरभ आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सिजाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मर टमगेरे तेरी बांसो तपस्या कर दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेल वीर बंग सी बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने आवे।

चंद्र हुन जात जाके बाप हुन माय दागे पूर्ण प्रभा के सो छटक अन मानी है तेज हूं को तंत्र है के राज से को जंत्र है के मोहने को मंत्र है नि जंत्र के खजानी है तेज हूं को तार है के राज से को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपनों को भूप है के रूप हूँ को रूप है को मत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध का भूत है के अक्षय अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है जो गुहों को जंत्र है के तेज हूँ के तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूँ के घर है देवन को देव है निरंजन अभिव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान।

करण है, सुख को करण है, तेज को प्रकाश है, पाइये न पार पार अपार, हुंगो पार जगुगी जत विचार, सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमाल गावे बसी हल पिध्या, बोर बिना पार पावया, सत्य अनास है, देवन को देव महादेव, हुंग देव है, निरंजन है, भेव नादत विनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव, हूं के देवनाद, भूम के भुजैया है, मोहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज, हूं के साजा महाजोग, हूं को जोग है, तरैया द्रुम छाल के, कामना के कार है, के बुद्धता को हार है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावती, छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के, हंसनी सिसी हारूम हीरा सी हुसैन आबाद, गंगा कैसी धार चंदी सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ कठ रूपा कैसी रामपुर, सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के, जम्पा सी चंदे दी गुड़ चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सिर सी सुरंगाबाद निके सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलपा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदाबाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के, प्रतंगी तेरे गीत गायत है, भक्करी कंधारी गोर गखरी कर जचारी, पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर मैं विराज।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईयां। तुद विण सिद्ध

सचा नाव सच नाम की लागे भूख उत भूख खाए चली यह दुख सो क्यों बसरा मेरी माए सचा साहिब सच नाए रहाओ सच नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट ना जाए

अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा होए बैठा काहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद

घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तत घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत

संत जनाब हर जस गायो कोट जन्म की दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई सोहियां बेअंत कुलां दी माफी कल दा एक दिन दा

पौड़ी आपे ही करना क्यों कला पे ही ते धारिये देखे कीता अपना दर कच्ची पक्की सारिया जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिया है जिसके जी प्राण है गुरु साहिब नो विसारिये अपन हथी अपना पे ही काश वारिये अपन